0: फिर नुतफे का लोथड़ा बनाया, फिर लोथड़े की बोटी बनाई, फिर बोटी की हड्डियां बनाई, फिर हड्डियों पर गोश्त पोश्त चढ़ाया, फिर उसको नई सूरत में बना दिया। तो खुदा जो सबसे बेहतर बनाने वाला बड़ा बाबरकत है।
1: ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ
0: फिर उसके बाद तुम मर जाते हो।
1: ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ
0: फिर कयामत के रोज उठा खड़े किए जाओगे।
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: और तुम्हारे लिए चार पायों में भी इबरत और निशानी है कि जो उनके पेटों में है उससे हम तुम्हें दूध पिलाते हैं, और तुम्हारे लिए उनमें और भी बहुत से फायदे हैं, और बाज को तुम खाते भी हो।
1: وعليها وعلى الفلك تحملون
0: اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو
1: ولقد

0: मेरी आयतें तुमको पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती थीं और तुम उल्टे पांव फिर फिर जाते थे।
1: मुस्तकबिरीन बिही समिउन तहजुरून,
0: उनसे सरकशी करते, कहानियों में मशगूल होते और बेहुदा बकवास करते थे।
1: अफलम

0: फिर जब सूर फूंका जाएगा तो न तो उनमें कराबतें रहेंगी और न एक दूसरे को पूछेंगे।
1: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: तो जिनके अमलों के बोझ भारी होंगे वो फलाह पाने वाले हैं।
1: وَمَنْ خَفَّتْ

0: और जिनके बोझ हल्के होंगे वो लोग हैं जिन्होंने अपने तईं खसारे में डाला, हमेशा दोजख में रहेंगे।
1: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون
0: आग उनके मुंहों को झुलस देगी और वो उसमें तेवरी चढ़ाए होंगे।

0: परहेजगार औरतों को बदकारी का ऐब लगाएं और उस पर चार गवाह न लाएं तो उनको 80 दुर्रे मारो और कभी उनकी शहादत कबूल न करो और यही बदकिरदार हैं।
1: इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बाद ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم।
0: हां, जो उसके बाद तौबा कर लें और अपनी हालत संवार लें तो खुदा भी बख्शने वाला मेहरबान है।
1: والذين يغضون ازواجهم ولم يكن

0: इन।
1: और पांचवी दफा यूं कहे कि अगर ये सच्चा हो तो मुझ पर खुदा का गजब नाजिल हो।
0: वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाहा तव्वाबुन हकीम।
1: और अगर तुम पर खुदा का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो बहुत सी खराबियां पैदा हो जाती, मगर वो साहिब करम अमीम है। और ये कि खुदा तौबा कबूल करने वाला और हकीम है।

0: और जब तुमने उसे सुना था तो क्यों न कह दिया कि हमें शाया नहीं कि ऐसी बात जबान पर लाएं। परवरदिगार तू पाक है, ये तो बहुत बड़ा बोहतान है।
1: या

हाँ अगर तुम किसी ऐसे मकान में जाओ जिसमें कोई न बसता हो और उसमें तुम्हारा असबाब रखा हो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो पोशीदा करते हो खुदा को सब मालूम है।

0: क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ही बादलों को चलाता है, फिर उनको आपस में मिला देता है, फिर उनको तय बतय कर देता है, फिर तुम देखते हो कि बादल में से मैं निकलकर बरस रहा है और आसमान में जो ओलों के पहाड़ हैं उनसे ओले नाजिल करता है, तो जिस पर चाहता है उसको बरसा देता है और जिससे चाहता है हटा रखता है, और बादल में जो बिजली होती है उसकी चमक आंखों को खीरा करके बिनाई को उचके लिए जाती है।
1: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار
0: خدا ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، اہل بصارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔

0: वो कहेंगे तू पाक है, हमें ये बात शायन न थी कि तेरे सिवा औरों को दोस्त बनाते, लेकिन तूने ही उनको और उनके बाप दादा को बरतने को नेमतें दी, यहाँ तक कि वो तेरी याद को भूल गए और ये हलाक होने वाले लोग थे।
1: فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا

0: की ताजगी का सफर तय कीजिए। यूसीपी की दुनिया के साथ, तो सुनते रहिए
1: سيد الأولين والآخرين
0: FM 92.6

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: इस हुनर कदा में, इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं, उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

साथ दिल के चले, दिल को नहीं रोका हमने, जो न अपना था उसे टूट के चाहा हमने, एक धोखे में कटी उम्र हमारी सारी, क्या बताएं किसे पाया किसे खोया हमने।

Number one radio station, FM 92.6, UCP की दुनिया, UCP की दुनिया. Number one radio station, FM 92.6, UCP की दुनिया, UCP की दुनिया.

0: number one radio station, FM 92.6, UCP की दुनिया, UCP की दुनिया.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, FM 92.6 UCP की दुनिया के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली अजवद और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद इरफान अली फानी साहब. ब्रेक से पहले हमने कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में पूछना था सर इरफान अली फानी साहब से. हम इनसे अब पूछेंगे कि सर आप बात कर रहे थे तनकीद के बारे में, आपने बात की तज़हीक लफ्ज़ आपसे इस्तेमाल किया और तीन चार और लफ्ज़ थे जो आपने सिमिलर इस्तेमाल किए, तो मुझे आप ये बताएं कि इन अल्फाजों में डिफरेंस क्या है, बेसिकली हम इसको किस तरीके से हम जाने.
2: अजवद आप जितने भी लफ्ज़ अभी हम इस्तेमाल कर रहे थे तनकीद तज़हीक और मज़ाह या मजाक, अब ये वो अल्फाज हैं कि इनकी अगर हम नियत को जान लें कि करने वाले की नियत क्या है तो हम इनको डिफरेंशिएट भी कर सकेंगे. अगर तो वो इख्तलाफ हैं, ये सारे इख्तलाफात, तनकीद की बुनियाद भी इख्तलाफ होता है, तज़हीक की बुनियाद भी इख्तलाफ होता है, और जब आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हो उसकी बुनियाद भी इख्तलाफ ही होता है. अब उस इख्तलाफ के पीछे आपकी नियत अगर तो दूसरे की इसलाह करना है तो वो तनकीद आएगी कि मैं ये चाहता हूँ कि अजवद में ये खामियाँ हैं, अगर ये टाइमली क्लास में आना शुरू हो जाए, टाइमली जो असाइनमेंट्स हैं उन पे काम करना शुरू कर दे तो ये बहुत जल्दी ग्रूम कर सकता है और ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है. अच्छा, अगर मैं ये चाहता हूँ कि क्लास के अंदर ये जो बच्चा है इसको मैं इस तरीके से इसे मैं बात करूँ कि ये डीग्रेड हो, ठीक है, ये बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सवाल करना मुनासिब नहीं लगता तो वो सवाल बड़े करता है, लिहाजा मैं अब जो है ना इस पे तनकीद करना जो है ना वो मैं शुरू करूं. अब मैं अगर आपकी ज़ाहरी शबाहत को, आपकी उन बातों को इख्तलाफ की नज़र करूं, अगर मेरे इख्तलाफ का निशाना आपके नज़रियात नहीं है, आपकी ज़ात है, आपकी ज़ात में मौजूद आपके जिस्मानी खदुखाल हो सकते हैं, हम किसी को कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा ऐसा है, तुम्हारे होंठ ऐसे हैं, मतलब उसको डीग्रेड करने के लिए, तो ये लफ्ज़ तज़हीक होता है, ये तनकीद में नहीं आएगा. और असल में मैंने जब इन तमाम चीज़ों को मैं जब मुशाहदा करता हूँ या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मेरे अपने तजुर्बात होते हैं कि हम बाज़ुकात मज़ाक के नाम पे ना जाने कितने लोगों का दिल तोड़ रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि दूसरे के दिल में ये जो बात जिन पे हम हंस रहे हैं दूसरे के दिल के अंदर ये कैसे तीर की तरह लग रहे हैं. मियां मोहम्मद बख्श ने कहा था, मस्जिद टा दे मंदिर टा दे जो कुछ टेंदा पर किसे दा दिल ना टावी रब है दिल विच रहंदा. तो यो जो दिल होता है ना वो अब सुनने वाले को जब लफ्ज लग रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पर मेरी ज़ात को नीचा दिखाया जा रहा है, मेरी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जा रहा है और मेरी जो एक शख्सियत है उसको इस तरीके से दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है. अब फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासेस के अंदर ना कुछ बच्चों की उम्रें ज़्यादा होती हैं, लाइक जो देहाती बैकग्राउंड से जिनका ताल्लुक होता है और लेट उम्र में वो स्कूलिंग उनकी स्टार्ट होती है तो वो होते तो बीएस में हैं लेकिन उनकी उम्रें आम बच्चों से काफ़ी ज़्यादा होती हैं. अब पूरी जो क्लास के अंदर ऐसा एक तबका होता है हर क्लास के अंदर जिसको मैं आमतौर पे इवल एलिमेंट्स कहता होता हूँ कि वो उस बच्चे की उम्र को बार बार डिस्कस करके उसको टॉन्ट करेंगे, कभी उसको अंकल कह के पुकारना शुरू कर देंगे, कभी उसके लिए बाबा जी आ जाएं आप बड़े हैं आप इधर आके बैठ जाएं. अब जाहरन अब ये लफ्ज अदब वाला है कि बाबा जी आए बैठ जाएं आप उम्र में बड़े हैं, लेकिन जब आप बार बार इसको रिपीट कर रहे होते हैं तो आपकी नीयत पीछे ये है करते हुए कि हम दुनिया को ये बता रहे हैं कि ये उम्र में बहुत बड़ा है और हम उम्र में इतने छोटे होके भी इसके बराबर बैठे हुए हैं. मतलब आप कंपेयर कर रहे हो कि मैं 12-15 साल का होके बीएस कर रहा हूं और ये जो है 22-25 साल का होके बीएस कर रहा है.
1: अच्छा सर, इसमें मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगा. देखिए हम लोग खुद ही दूसरों को मौका देते हैं ना कि हमारा मजाक उड़ाया जाए, तो हम कुछ ऐसा क्यों, ऐसा क्या इकदाम किए जाए, हम अपनी तरफ से क्या बेस्ट दे सकते हैं कि लोगों को स्टॉप किया जा सके इस चीज से, क्योंकि ये भी एक वायलेंस ही फैलाना है ना कि आप किसी को बेजा क्रिटिसाइज करते हो.
2: नहीं पता है, सबसे पहले एक चीज होती है, अगर तो हम कोई भी बात करते हुए इंसानियत को मलहूज खातिर रखेंगे ना तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई शख्स भी दूसरे के साथ ऐसी बात करेगा कि दूसरे का दिल दुखे. अब इसके अंदर हमारा सोशल सेटअप कि हम किस बैकग्राउंड से हैं, अब वो कौन सी बातें हैं जो हमारे जहन में खबते अजमत पैदा कर रही हैं, अजमत का भी खब्त होता है। कुछ लोग जो हैं अच्छे ग्रेड की वजह से खब्त अजमत में आ जाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं उनका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग होता है, माशाल्लाह पैसे वाले होते हैं, अल्लाह ताला ने उनको सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, तो वो चीज़ उनको खब्ते अजमत में मुब्तला कर देती है। कुछ लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो या जज हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, या बड़े ओहदे पे अल्लाह ताला ने उनको फाइज किया हुआ है, तो वो इन चीज़ों को इस तरीके से लेते हैं कि उनकी तरबियत के अंदर वो पिछला जो बैकग्राउंड है वो नज़र आ रहा होता है। अब ज़िंदगी के अंदर आपको अल्लाह ताला ने जितनी भी नेमतें अता की हैं, ये वक्त कहते हैं बड़ा ज़ालम है। आज जिन खसाइस की बुनियाद पे हम दूसरों को बुरा भला कह रहे होते हैं, बहुत मुमकिन है कि कल को हम खुद उन्हीं खसाइस की बेस पे लोग हमको बुरा भला कह रहे हों। तो दुनिया में कहते हैं सबसे आसान काम जिसके लिए डिग्री की भी ज़रूरत नहीं होती, वो तनकीद है। वो एक बड़ा मज़े का एक वाक्या हमें सुनाया करते थे हमारे टीचर के, एक शख्स पेंटर था, उसने एक तस्वीर बनाई और एक चौराहे पे लगा दी और नीचे ये लिख दिया कि इस तस्वीर के अंदर जो जो फ्लॉज आपको नज़र आ रहे हैं, जो खामियां नज़र आ रही हैं, उनको आप सर्कल कर दें या उनकी निशानदेही कर दें। अब जब दूसरे दिन वो लगा के चला गया और वापस आया तो देखा पूरी की पूरी जो पेंटिंग थी वो सर्कल से भरी हुई थी, जगह जगह लाइनें लगी हुई थी कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्योंकि सबसे आसान जो काम है ज़िंदगी में वो एक ही है, वो दूसरों को तनकीद का निशाना बना देना। अब उसने नीचे लिखा कि अच्छा आपने बहुत अच्छा किया कि निशानदही कर दी उन गलतियों और खामियों की, अब आप उनकी निशानदही करने के बाद उनकी तसहीह भी फरमा दें, मतलब उनकी दुरुस्तगी कर दें, उनको सही कर दें। तो वो 3 दिन तक मुसलसल पेंट वहाँ पे लगी रही, लेकिन किसी में इतना ना हौसला हुआ कि उसमें तसहीह कर सके या उसको दुरुस्त कर सके। तो ज़िंदगी में हमारा सारे का सारा जो रवैया होता है वो इसी की तरफ निशानदही करता है। हमें यह समझना चाहिए कि जब हम एक उंगली दूसरे की तरफ उठा रहे होते हैं, 3 जो उंगलियाँ होती हैं वो हमारी तरफ होती हैं, तो हमें यह चाहिए कि दूसरों को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये ज़रूर देखें कि अगर वही बात कोई मुझसे कहेगा तो मेरे पे क्या बीतेगी या मेरे दिल पे उसके असरात किस तरह के होंगे।
1: जी, यहाँ पे हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। आप सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया। और ब्रेक के बाद एक लफ्ज मेरे जहन में आया था, खपते अजमत, उसके बारे में हम बात करेंगे कि बेसिकली लफ्ज क्या है। कीप लिस्निंग FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, प्रोग्राम जावेदा जिंदगी के साथ एक बार फिर मोहम्मद अली अजवद आपकी खिदमत में हाजिर है और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इरफान अली फानी साहब। इन्होंने ब्रेक से पहले बड़ा एक खूबसूरत और इंटरेस्टिंग वाकया बताया और वो सुन के बड़ा अच्छा लगा मुझे खुद। और अब हम सर से बात करेंगे। सर, बेसिकली मुझे अब आप ये बताएं कि तनकीद की जाती है लेकिन तनकीद करने का जो जायज तरीका है, सही तरीका है, वो क्या होना चाहिए?
2: तनकीद करने का सही तरीका तो यही है कि दूसरे लोगों के साथ जब हम इख्तलाफ होता है, और ये एक फितरी अमर है, फितरी अमर है कि हमारे दूसरों से इख्तलाफ होंगे। जो रंग मुझे पसंद है, ज़रूरी नहीं सारे लोगों को वही रंग पसंद आए। जो खाना मुझे खाना पसंद है, ज़रूरी नहीं बाकी लोगों को भी वही डिशेस पसंद हों। तो ये इख्तलाफात तो नेचुरल हैं। अब इन इख्तलाफात में रहते हुए उन इख्तलाफात का और उन डिफरेंसेस को आपने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिवली लेके आना है। तो जब भी मेरा किसी से इख्तलाफ होगा तो मेरा मतमय नज़र दूसरे की इसलाह होना चाहिए।

0: तारीफ की बजाय तनकीद करेंगे, इसे तो तैरने नहीं आता। मतलब आप पानी पे पैदल चल रहे हो लेकिन फिर भी देखने जिन्होंने तनकीद करनी है वो इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, यार क्या क्वालिटी है कि ये पानी पे चल रहा है। वो ये कहेंगे इसे तो तैरना नहीं आता इसलिए चल रहा है। मतलब इसने वहां पे भी तनकीद ही करनी है। और एक और जो हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी हकीकत है वो ये है कि वो लोग ज्यादातर उन मसाइल का हल दे रहे होते हैं जो सबसे ज्यादा खुद मसले में घिरे हुए होते हैं या उस मसले के ऊपर उनका सबसे कम इल्म होता है कि हम मुझे जिस चीज का पता ही नहीं है। अब एक चाय बनाने वाला ढाबे में बैठा हुआ एक शख्स है और वो ये बता रहा है कि क्रिकेट टीम को कैसे खेलना चाहिए, ठीक है। और हालांकि जब चाय मैं उसे पी रहा हूँ, चाय में या चीनी कम है या पत्ती ज्यादा है, कि चाय बनानी तो आपको आती नहीं, जो आपका फंक्शन है वो तो आप अदा कर नहीं पा रहे हो, लेकिन आप ये बता रहे हो कि ब्रोकरसी कैसे ठीक होगी, हुकूमत कैसे सही होगी, इकोनॉमी कैसे मुल्क की रन होनी चाहिए, क्रिकेट टीम का चेयरमैन किसको लगाना है। अब ये वो चीजें हैं कि जब मैं अपने दायरा कार से हट के बयान करूंगा, किसी दाना का बड़ा खूबसूरत कॉल है कि हम जिंदगी में वो बनना चाहते हैं जो हम नहीं होते। इंसान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब मैं वो बनने की कोशिश करता हूँ जो मैं नहीं होता हूँ, वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि एक लिबास मेरे लिए बना ही नहीं है और मैं उसको पहनने की कोशिश कर रहा हूँ, एक जूता जो है वो मेरे साइज का ही नहीं है और मैं जानबूझ के अपने पाँव जो है उसमें घुसेड़ना चाह रहा हूँ। जब ये मसाइल आ जाएंगे तो मेरी अपनी ज़िंदगी भी मुश्किल में आएगी, डिप्रेशन में आएगी, स्ट्रेस में आएगी, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जो मैं बनना चाह रहा हूँ। लिहाजा हमें यह चाहिए कि हम अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें और जो अपने गिर्दोनवाह में रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करें।
1: मैं ये समझता हूँ, मैं बताते खुद ये समझता हूँ कि क्रिटिसाइजर्स होना तो खुशकिस्मती है। क्या वो क्रिटिसाइजर्स होते हैं, आप उतने ज्यादा आपके लिए बूस्टर होते हैं।
0: एग्री,
1: तो आप क्या समझते हैं इस बारे में?
0: देखें, तनकीद को अगर तो मैं पॉजिटिव लूंगा तो वो तनकीद, वो कहते हैं ना कुब्बे नु वज्जी लाते हो सिद्धा हो गया, कि जिंदगी के अंदर बाज़ुकात कुछ लोगों की हुई तनकीद ही आपको अजमत की बुलंदियों पे लेके चली जाती है। अगर मैं अपनी जिंदगी को सामने रखूं तो मेरे लिए तनकीद तो बहुत फायदेमंद रही है जिंदगी के अंदर। जब जब जिस जिसने मुझे तनकीद का निशाना बनाया है तो मैंने उसके सामने तो शायद वो नहीं किया इजहार कि मुझे बहुत बुरा लगा तुम्हारी बातों का,
1: लेकिन साबित हुआ
0: वो मेरे लिए बूस्ट अप के तन्हाई के अंदर। फिर मैंने उन बातों को सोचते हुए अपनी एनर्जी लेवल को हमेशा अप रखा और जो मायूसियों और जो खदशों और वसवसों की राख में दबी हुई जो चिंगारियां होती हैं, बाज़ुकात ये जो तनकीद उस हवा का काम करती है जो उस राख को उड़ा देती है और जो सही आपकी ग्लोरी होती है, जो चमक धमक वाली जो राख के अंदर छुपा हुआ एक चिंगारा होता है, चिंगारी होती है जो आपको बहुत आगे ले जा सकती है, वो सामने आ जाती है। तो जब हम तनकीद को मस्बत वे में लेंगे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन तनकीद करने वालों को भी ये सोचना चाहिए कि जो आप तनकीद कर रहे हो उसमें तजहीक का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मजाक के नाम पे दूसरों की दिल आजारी नहीं करनी चाहिए, मजाक या मजाक के नाम पे दूसरे के जो जाहरी खदोखाल हैं, जिस्मानी खदोखाल, उनको मौजवे बहस बना के हंसी मत करो कि हर चीज अल्लाह की पैदा की हुई है।
1: अल्लाह की चीज
0: जब आप खालिक की बनाई हुई चीजों की तश्कील पे तनकीद करोगे तब तब वो खालिक भी आपसे नाराज हो जाएगा और उस खालिक की मोहब्बत से आप खुद महरूम हो जाओगे।
1: अच्छा, फाइनल रिमार्क्स को ही दे दें, अपने फाइनल एक छोटा सा मैसेज दे दें अबाउट तनकीद।
0: बिल्कुल छोटा सा मेरा मैसेज यही होगा कि तनकीद करने वालों के लिए तो ये मैसेज है कि तनकीद इस्लाह की गर्ज से आप करें और तनकीद जिन पे की जा रही है उनको भी ये चाहिए कि उसको पॉजिटिवली लें और तनकीद करते हुए कभी भी ये इस पहलू को नज़रअंदाज मत करें कि अगर वो बात आपको कही जाती तो आप पे उसके किस तरह के असरात मुरतब होते। अगर आपसे कही हुई बात दूसरे बंदे को आप कह रहे हो तो शायद जितना गुस्सा आपको वो बात सुन के आता शायद दूसरे को भी, वो भी इंसान है, उसके भी एहसासात हैं, उसके भी जज्बात हैं, उसको भी वैसे ही बुरा लगेगा जैसे आपको बुरा लगेगा।
1: जी लिसनर्स, हमने आज गुफ्तगू की एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर तनकीद के नाम से। तो हम उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी गुफ्तगू अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और आप आगे भी सुनते रहिएगा हमारे प्रोग्राम को। और इसी के साथ मैं साइन ऑफ करूंगा, इजाजत लूंगा आपसे। नेक्स्ट वीक आपके साथ नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। सो टिल देन हमें इजाजत दीजिए। कीप लिसनिंग FM 92.6 UCP की दुनिया।

फिर उगने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

Fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

मौसीकी के सुरोरतान सुरोरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6।

0: Let's get stress free. Tune into FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: अगर आपका कानूनी हक हुकूमत पंजाब के किसी सरकारी इदारे में ताखीर या बद इंतजामी का शिकार है और ये किसी अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं, तो फिर आप दफ्तर मोहतसिब पंजाब से फौरी राब्ता करके अपना कानूनी हक जल्द हासिल करें। दफ्तर मोहतसिब सूबाई हुकूमत से मुतालिक अवामी तकालीफ और शिकायात के हल के लिए 36 अजला में सरगर्म अमल है। आप अपनी दरख्वास्त दफ्तर मोहतसिब पंजाब को बजरिया डाक, वेबसाइट, मोबाइल पोर्टल या मुतालिका जिला के मोहतसिब ऑफिस में बजाते खुद जमा करवा सकते हैं। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए मोहतसिब ऑफिस की हेल्पलाइन 1050 पर राब्ता करें। अवामी हक का मुहाफिज दफ्तर मोहतसिब पंजाब।

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा

फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहे। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.vk पर चेक करें।

0: 50 16 is on what?
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry. That's why we are here. We are UCP Ki Duniya, FM 92.6.
1: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
2: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
3: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
1: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
4: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
3: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز UCP کی دنیا FM 92.6